अच्छा जल्द शाम का वक्त है और इस वक्त में काफ़ी राग गाए जाते हैं, तो अभी अभी बैठ के मैंने यहाँ पे आया तो मैंने बोला उरूज को के क्या गाते हैं, तो हमने सोचा कि रात मुल्तानी पेश करते हैं। Mm-hmm.